0: बस तुम कुफा भी
1: फाल या तेरा फाल आप कहाँ वाले फने चीज क्यों है सच्ची अधिक मास ना वन तंदरा ना जो फने फने ने चीजो के तेरी म्यान सुन भोगा माला गाश दे तो जे मानन जो इफ़िद या तो का इफ़िद
2: ¡Gracias!

0: क्लास तुम कुफा भी
1: दिफकिन मस चपकन तुम्पन असवा जान तो चांच वितन उलारेक ओच फितेन का मिकुरियां नच का मितोव मार नि फोक फरिंग अति फोक चेक पम नच कराज नस कराज नारेक के तफ्रेक चंग अतन फोक फोट जुगन सेक फोट मेना मेंच नि लोक न सेक कति वो फाफा फोट त्याको नो त्याको इस त्याको मलोंग अति कलोन त्याव कुन याफा वेलुन तंग अतन फंग अम्प्यांग नंदाल फियावान हस तोक न चिंबा आल सिस मन गन आम फोट चारन मि फंग आम ओहच नम फिसिंग स्न बार फोजे चमे सुबिक माई फंतंबा अगजे मन बाद लावच मिंजन तोहच वेलुन तंग अतन फ्रेसन क्यांग फिता तकाल फिता कन फंग त्यावंग न तो ओफंग फोजे मकोल चेंग मलागास मानन कास चंग चिम से वाचका से चमलिंग क्या लोफंग मंदोन चाचे मेरे हरे फो गास ता तो बे जाजा गास तेरा गास फो ओचुन मेन कर न आचुजान तम राजंबे नि आज नुवान कुला कंग तन ननरियन चार गास चार फरा नि कांत की तोंजा म्याक्च अंप फंता कोनांत फतन नि पुरो की गास कार अरो वक चवोच ति फोक फेफंगा ति फोक दोस कोम नंगा से चतन जाजक के ना मलाजमेंट ओच सा इंग ति मंगिन मंदुन चाच मरे हरे फो जातो ति मेंगा चका राजक
2: नरीरे रीरन सासन फोतन नि सासन ति मफंतटन लांजन ते लांजा लांजा नि फोक को इंपितना मतकन लेल को मंगिक फो मवैसटन फतेवा कोनांजी के tiako za tiako ano tiako za reo de tiako tsika satriarany anatra de mifankat